सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचै नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वड़ियाई, आग थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे, वड़ा न होवै घट न जाए। ना ओह मरै न होवै सोग, देंदा रहै न चुकै भोग। गुण एहो होर नाही कोए, ना को होवा ना को होए। जे वड़े आप ते वड़ तेरी दात, जिन दिन करकै कीती रात। खसम विसारै है ते कम जात, नानक नावै बाज सनात। राग गोजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा। बिनो करो।

है मिल संगत गुण प्रगास, जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरन संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जी।

शैल पत्थर में जंतु पाए ताका रिजक आज्ञा कर तरिया। मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनिता कोई न किसकी तरिया। सिर सिर रिजक संभाही ठाकुर काहे मन पाओ करिया। उड़े उड़ आवे सै कोसा तिस पाछे बचरे शरिया। तिन कवन खिलावे कवन चुगावे।

कर कर वेखै है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरणै पहिले निवासा, पाणी पावक तनहै किया। पंक जो मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबी अले। मन एक न चेतस मूड मना, हर विसरत तेरे गुण गलियार हाओ।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं चौपाई पुनराशिष का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोहपन ब्रिष्ट गगन ते पई सभिन आन बधाई दई धन्य धन्य लोगन के राजा दुस्तन दाह गरीब निवाजा अखल पवन के सृजन हारे दास जान मोहलेहो उबारे कब्यो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काब हो आप हाथ दे मोह बचाव हो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सबै रन को आज संगरिए पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तो मैं है छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया हो जो सदा हमारे पच्छा श्रीयस तुझो करिय रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दश कंता काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहि हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझिया हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधुन की सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट की पट पट की जानै जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंब ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को

तुमरा लखा न जाय पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहीं पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर कैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए चम पव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करूरन काता। जे अस्तु तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताके ताप तनक में हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्व सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहि उबारा।

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूरन सुभ्राता, किल बिख सगल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता, श्री अस्तो जप पाए दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़ेला, सुने गुंग जो याहे सुरस न पावई, सुने मूर्चित लाई चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर की रह, हो जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई, संबत सत्रह है सहस पणिजय, अर्ध सहस पुन तीन कहिजय, भाद्रव सुदी अष्टमी रववारा, तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा, स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सब मोह भेद कह हम एक न जान्यो, श्री अस्पा

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तम पाया।

पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी

अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबसे अधारो। जी को खावे जी को पुंचे, तिसका होए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई, नित नित राखे उर तारो।

भगवन सगल समग्री तुम रह सूत्र तारी तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जा।

दुख पावै। जम काल सहै सिर डंडाहे, हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण भाव खंडाहे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाहे। हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वडाहे। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडाहे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवां।

मोह मल विवस कियो, काम गै केस पछाड़ियो, क्रोध खंड प्रचंड, लोभ अपमान स्यो छाड़ियो, जन्म काल कर जोड़, हुकम जो होए

दत्मित पार्वन गर्मदार अद्भुत प्रचंड मित गत खंड सर्वा बड़ा जय अंदर भंड है

0: स्वरूप है, प्रयुक्त अनुप है,
1: सदा है, विभुक्त प्रवाह है,
0: अनुक्त स्वरूप है।

सर्वेश्वर है, जगदेश्वर है, परते पर है, त्रुणा कर है, अत्ता कृत है, अमृता अमृत है, अत्ता कृत है, तरनी कृत है, अत्ता कृत है, अमृत

0: नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र
1: नमो अंधकारे नमो तेज तेज
0: नमो बिंद्र बिंद्र नमो बीज बीज
1: नमो राजंग ताम संग सात रूपे
0: नमो परम तन तन तन तन स्वरूपे
1: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञान
0: नमो मंत्र मंत्र नमो ध्यान ध्यान
1: नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञान
0: नमो पोज पोजे नमो पान पाने
1: नमो करे करता नमो सात रूपे
0: नमो

0: प्रथम संसार
1: कौन सी सुंदर गेता
0: सभी श्रेष्ठ काया चंबवा जुगा स्वरूप
1: तुम करो सिख वार सुख सुंदर
0: दुष्ट ते उद्भत पाता सकल मलेश करो रण काता
1: समय परे जिनके दुष्ट को तुम मरे
0: पुरख जवन पग परे त्यारे तिनके तुम संकट सब तारे
1: जो कोई बात दिया है ताके काल गिनी आए है
0: अच्छा होए काय सब काला दुष्ट रे चरे तत्काला
1: सुन जाए न रो ताके तात निंग मारो
0: वेद से कर्म सब हुई दुष्ट जा सके न कोई।

0: गुरुन सबराता
1: कृपा सकल देखो हता दुष्ट दुष्ण गोशय करता
0: श्री शुजब दे दियाला गुरुन ग्रह गंत काला
1: मन माच फल पावे सोई दुख नत से व्यापत कोई अड़े
0: स्नेह जोया रसना पावे स्नेह मोटल चितता आवे
1: दुख दर्द पाओ निकट ना तिन्नर के रहे हो जोया की एक बार चौपाई को कहे
0: संबत चित्र सस्मी जय दिस सस दीन की जय
1: आदर सुधी अस्मी रवारा तीस सदत्रम ग्रंथ

0: सब सोप गुरु को हुक्म मनिए पाइए
1: गुरु केरा कहो सच्ची वाणी
0: कहे नानक सुनो संतो कतियो अकत कहानी
1: हे मन चंचला चतुराई किने ना पाया
0: चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया
1: हे माया मोनी चिन एक परम बुलाया
0: माया ता मोनी तिने किती जिंट गोली पाईया
1: कुर्बान कीता तिसे विठो जिल मो मीठा लाया
0: कहे नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया
1: हे मन प्यारा तू सदा

0: प्यारे, तू सदा सच संभाले।
1: अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया,
0: अंतो ना पाया किने तेरा, आपना आप तू जाने।
1: जी जान सब खेल तेरा, क्या को आप खाने।
0: आखे था वेके सब तू है, जिन जगत उपाया।
1: कहे नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत ना पाया।
0: सुर नर मुंजन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया।
1: पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया।
0: जी जंत सब तुद उपाय, एक वेग परसन आया।
1: लब लो अहंकार चुका, सतगुरु।

0: को सिख गुरु से ती सन्मुख होवा
1: गुरु
0: के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मा समाले
1: आप छठ सदा रे पढ़ने गुर बिना वर न जाने कोए
0: कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख हुए
1: जे को गुर देवे मुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पावे
0: पावे मुक्त ना होता कोई पूछो विवेकिया जाए
1: अनेक जुनी परम आवे बिन सतगुर मुक्त ना पाए
0: फिर मुक्त पाए लाग चरनी सतगुरु शब्द सुनाए
1: कहे नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त ना पाए
0: आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी
1: बाणी त गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी
0: जिनको नदर कर्म होवा हृदय तना समाणी
1: पीवो अमृत सदा रो हर रंग जप्यो सारंग पाणी
0: कहे नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी
1: सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी
0: बाणी त कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी
1: कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आप बखाणी
0: हर हर नित करे रसना कहया कछु न जानी
1: जिन जिनका हिलया माया बोलन पे रवानी
0: कहे नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची वाणी
1: गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ
0: शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ
1: शब्द से ती मन मिलिया सचे लाया पाओ
0: आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए
1: कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ
0: शिव शक्त आप पाए कह करता आपे हुकुम बरताए
1: हुकुम बरताए आप वेखे गुरमुख किसे बुझाए
0: तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए
1: गुरमुख जिसको आप करे सो होवे एक सो लिवलाए
0: कहे नानक आप करता आपे हुकुम बजाए
1: सिमरे शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्ते सार न जानी
0: तत्ते सार न जानी गुरु बाजो तत्ते सार न जानी
1: तेही गुणी संसार ब्रह्म सुत्या सुत्या रहन विहानी
0: गुर कृपा ते

0: शरीर प्रवान हो जिन सतगुरु सो चित लाया।
1: ये नेत्रों मेरे हो हाथ में जो तरी हर वे

0: चतुरारण से घूमना से सिख मुहना मिलकायो
1: भेद ते ना भेद लगे उस अवार पर यार हाथ आयो
0: पाए सके नहीं पार उमा पत सिद्ध सनात सनंतन ते आयो
1: ध्यान करो ते को मन में जय को अब दोष सब जगचायो
0: वेद पुराण कते पुराण अपेद निर्पान सबे पछारे
1: भेद ना पाए सिद्ध और भेद को किरदा है शेर पुकारे
0: राग न रूप न रेख न रंग न साक न सोग न संग तिहारे।

0: हर सिखूं अपने ही मन को ए लालच हो गुंतो चिरू
1: जब आपकी ओद निदान मने आते ही रन में तब जूझ मरो।

ते जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई एक अरदास पाठ

सब तुम मात पिता हम बारिक तुम्हारी कृपा में कोई न जाने तुमरा सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो ऐसो

चक्र चेहने और बरन जात और पात नहन जेहे रूप रंग और रेख पेख को कह न सकत के हे अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमित ओज कह जय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिज त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण त्रिन कहत तय सर्वनाम कथय कवनम।

पाठपुस्तक संध्या बादं सिल भुज सुबगुल समादं मुख चूट पी भूखंड सारंग त्रै पाल ते हाल बेचारंग गल माला तलक ले लाटंग दुए तोती बसर को पाटं जी जानस बर्मं कर्मं साफो कड़ निश्चो कर्मं कहु नानक ने चोते आवे इन सतगुरु वाट न पावे पौड़ी कपड़ सुहा।